0: भारत यक समानि मानमानि सिकांग भारतनि यक समानि बाना ओ दालबुसुक पालितांगनाय आबनुति पांदाति सालखला जागो बाना ओ दालथाम पालितांगनाय हिनै ते आबनि गजारो हिंगे अशोक चक्र निबो तांगनाय हिनै पान्दाति साजागो 1993 इंग्रेजी बिसिनि दिने नाय सालो पश्चिम बंगव जुब कांग्रेस नेत्री ममता बन्दोपाध्यायनि साक्थार मंबाय राइटार्स सोलो अभिजान अभिजान खलाय टंफ्रु पुलिसनि गुलिबाय 13 जना बरग रग थैका आबनो मुटु खलायनो दिदिनि हायसालो शहीद दिवस हिनै लाइबुमाव बालाय जागै दङ नाइनटीन इंग्रेजी बिसिनि दिनै नायसालो नेल आर्मस्ट्रं बनो पुइला नखाव थांगै तंगुमानि 1960 इंग्रेजी बिसिनि दिनै नायसालो श्रीलंकानि पुइला बोरै मन्त्री बक्रक संजागो सिरिमाबु बन्दर नायकन इंग्रेजी बिसिनि दिनै नायसालो नोबेल सकाट मानाय सेक्रों आर्नेस हेमिंग्वे आसायो 1951 इंग्रेजी बिसिनि दिनै नायसालो मार्किननि टके मोसाक्रों रबिन उइलियाम्स बो दिनै नायसालो आसायो आसुक जरा लाइथानाय बिसिरावबो तामो तामो ओंखा अबनति किसिसा खाना लायखा फायदे गाहायनो खरांगो ताबु साखानग्रोनि गंनो किसा खाना नाहान लायन
1: आव साखामग्रोनि गगो चिंतिनि खाना लायन सालब्रुमनि तमु न जों गाहामखे दरिनानि बागै फुं आइखांखे न फुं आइमानि सिमि न किसा मिसा खालायथाय खालायनानि नांगौ आबरन रोगिनि जों ककिसा सायमान लायन आव सालब्रुम न जों अकक रक्न खोनालाय एबा साक साक जों जतन सिलाय ब सामु खायखांखे चिनि सागनि बागै गाहाम हाइफानो वाइसे उसुखै बर' रक खा खामानि बिसिंथै खालायनानै आं फानो खालाया आबाहाय सामग्रबो ओङै थांगौ आबुनि बागै न जों सागन' गाहाम तन्नानि थांखाय उराम उराम अमाहाय ककरकन' मा खरसा लायो मुइथ' मा खालायलायो थौयैबा जमाया गलो न पैला जों भग खालिवो दै गाहामखे नोंनानि नांगौ आव जों जतन' सायमानो हायफानो सालब्रमनि खाब्रम बिब्रमो जों सालब्रमनो बाक्सा बाक्सा बगैबो थांगौ चिनि साग्न' हाइड्रेट खालायो जामुं रग्न' जाखाहांखे गाहामखे हजम खालायो साग साग साग्न' हेलें सासा खाय तनि थानि बेलायन' चुबावो आबुनि यागुल' दस मिनिट रग्नि हाय यागुल' गावजिनि बुथै खालिबहखौ नोंखाहांखाय बेलायन' जावो आबुनि बागै न' जों अबाहाय फुङायखाहांखे न' जोंनि साग हामग्रायनि बागैनाय किसा मिसा सामग्रकन' जों साग सागनि मुंजों मा बायन' मा खालायो तायब' जों जोंनि साग्न' गाहाम तन्नानि थांखाहांखाय नांगौमानि सामग्रक खालायमानि बिसिंथै बिसिंग' दङ किसासो सिमुंजों जतन' सायमानानि नांगौ थुमानि जराव' कबं तलाव' जों गोबांखौ जरानो नुगौ बर' रग फन रग तनि थुमानि आमाहाय थुखा हांगा हांगाय जोंनि ब्रेन' बेलायनि

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग एट पार्लियामेंट हाउस दिस मॉर्निंग। President Draupadi Murmu to hold talks with her North Macedonian counterpart in Skopje today. Four Indians killed and one critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

फुले गर्जन खर खनाके कमी चंग सपा कना दाश को न आ दाश को संगली गंतनी

जुदा जुदा हामियाव बगलाय थांमानो जों गाहाम फोरोंनानि जागाव हामिया फोरोंखांगाखै बेबागनो जतन' सिलायजागै थाङो हाइखिया अजराव जों हायनोहाय थांलायनाय गायसा दांसा जाङो।

जों नायते नायते दिपरनि दाम दाम से नितामय सते ब्रेजेने एक्जाक अचराव हंका गायतेनिनि वन सुखमम बान्दाव जों कक्लाम सालाय दंलाय फियाबा कक दुख किसा साचिनि मथाक जाक नेटवर्क इशु एबा टेक्निकल इशु नि बागै अंखाना हाके जों दायब कक्लाम सालायनाय फिया अजराव जों तांसार जामुं खनालायनाय हेमन्त जमा देने खरां बाय और चामू

संखनाई नलाई नै तिरप्रा आदर सुपरवाइजर अपरेटर र बरक त्लाङ जाकनाय एबा बरक त्लाङ तिजक दगै दङ सीएससी गभर्नन्स सर्भिस इन्डियन लिमिटेड आदर सुपरवाइजर अपरेटर पश्चिम तिरप्रा आदर सेवा केन्द्र आबंखा कन्ट्राक्ट बेसिक दंनाय बिसानि बागै पाइथाक सालमारि ओंखा मियाव नि मानो अ तिनिसिक जरा आबनि बागै एरोंमारि नांनाय 12 पास क्लाइजाक माध्यमिक ताय 12 आईटीआई क्लाइजाक रगब ओंगै मानो डिप्लोमा क्लाइजाक उमर ओंनानि नांनाय टीचार निशिमी उमर ब्रिजी जरा हाइकेनरक तुमुंग अमहाय सामुंग बिसानि बागै याग्रना मुसुंकाय एप्लाइ क्लाइमानो तंनानि नांनाय लगिव कम्पिउटार सार्टिफिकेट ड्र अनलाइन दै कयब्लाय रहनानि बागै वेबसाइट एंखा https://csc.gov/in न रहनानि नांनाय ककब्रग साहित्य सभानि बागै तिनिनि सिमि ककब्रग साहित्य सभा आगरतला दशरथ भवन सुपारि बागान आगरतलाव चेंजागै दङ तिनिनि सिमि थाम नैथि थाम एबा 21-23 जुलाइ जरा अम दंनाय अजागान रक गोबांमा पद्रिपद ककब्रग साहित्य नै सायमाननाय सायमाननानै मोजंखांगेन रक सारेकनि दाम थामनि सेमि सारेकनि दाम ब्रै जरा अ ककब्रग साहित्य सभा आगरतलानि ककब्रग पान्डाव मानजागै मानो दै जों थांलायनो गोबांमा स्किम दङ ब्रै रकनि बागै एबा जेला ब्रै जतन जों सायमानो आरो जतनिस्लाय बांमानि एबा जों सानानै थांखागाय लक्षपति दिदि स्किम होनाय गायसा इकनमिक स्किल एम्पावारमेन्टनि दैयै आब चेंमानि बालखा लक्षपति दिदि स्किम बनि नाहारमुं ओंखा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि एसएससि टीम्स नामै जों ब्रिरकनि गोबांमा पत्रेपद सामुं दांगै माननानै एबा जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिसिंथिखाय इनकाम क्लाइमानानै आबोनि बागै पुइलाव नरकन खक्सा राशाय रांखाय नरकनि बेंक ट्रान्सफार क्लाइजाखनाय आबोबायखै नरक नरकनि फाउंडेशन एबा नरकनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि याफांन रागदि मानो प्रधानमंत्री मेट्रो बंदना योजना आबोब दंग जों फिनान्सियल दै नायखाखाय एबा रां थंनि बिसिं दिंखाय आरो खक बारा साय बरक रकन एबा बोरै बोसा बोरै सागदेरिया रकन साग गेंमानि उल याफार जागो जेफ्रो बिनि बैसा आजाय आफ्रो बन एबा बुमा बसान रां दुबै चुबा जागो जों त्रिक त्रिक तैब सालायनाय महिला किसान छत कि तरम परियोजना एम के एस पी हिन्जागो आबो आमो बायसों गोबांमा उमेन फार्म एबा ब्रिरक गोबांमा फार्म खुलगै लाइफहुडनि हायगाय एबा जों सानानै थांखागाय ब्रिरक गोबांमा फार्म खुलगै जाथे पट सामुं एबा ताखुम एबा वाक एबा तक आबो हायखे रुवै ब्रकनि रां थंन बांग्रोवै ब्रकनि नुखुं दै ब्रकनि ग्रुपन

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान।

0: और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोग को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रूपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैठे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रदीम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में

0: सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और